तदनुसार 26 मई सन 2026। श्रोता, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं और अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि।

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा।

हर एक कार्य की शुरुआत होती है गणेश भगवान की आराधना के साथ। अभी आपने सुनी नरेंद्र चंचल की आवाज में ये सुंदर गणेश वंदना। आइए सुनते हैं अगली भक्तिमय रचना जगजीत सिंह की आवाज में।

चंद्रो आत्मा की आवाज में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। आइए सुनते हैं शर्मा बंधु के स्वरों में ये भक्ति में रचना।

चंद्रो आत्मा की आवाज में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। आइए सुनते हैं शर्मा बंधु के स्वरों में ये भक्ति में रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम चिंतन।
1: परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाये हैं, इसलिए ईश्वर की प्रार्थना उपासना उनकी भक्ति बड़ी है। ये कथन था महामंत्री का। भगवान की भक्ति बड़ी तो है, किंतु वो प्राप्त होती है सज्जन और शालीन को ही, इसलिए शालीनता उससे भी बड़ी है। ऐसी मान्यता थी राजगुरु की। दोनों के तर्कों के समर्थन में सभा लगभग दो भागों में विभक्त सी हो गई। महाराजा वीर विक्रम आदित्य दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। इस विषय पर कई दिनों तक चर्चा होती रही, किंतु किसी समाधान पर वे न पहुंच सके। एक दिन महाराज वन में मृगया के लिए गए। शिकार करते करते वो घने जंगल में चले गए। वहां जंगली आखेटक जाति ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिससे सहयोगी तितर बितर हो गए। अकेले महाराज भागते भागते थक कर चूर हो गए। भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। कंठ सूख गया, प्राण गले में आकर अटक गए। दम घुटने लगा, कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक साधु की कुटिया दिखाई दी। घोड़े के सहारे धीरे धीरे जैसे तैसे पहुंचे, पर बाबा तो समाधि में मगन थे। पानी पानी कहकर आवाज लगाई, पर कोई फायदा ना हुआ। राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उनकी मूर्छा दूर हुई, उनमें चेतना का संचार हुआ, तो देखा कि वही बाबा उन्हें पंखा झल रहे हैं। साधु बाबा ने उनका मुंह धुलाया, पानी पिलाया और प्यार से सर पर हाथ फेरा। थोड़ी सी चेतनता और आई तो राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा। पूछा, आप तो गहरी समाधि में थे, मेरे लिए अपनी तपस्या क्यों छोड़ दी, समाधि क्यों भंग कर दी? साधु ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, परमात्मा की पूजा उपासना हम इसलिए करते हैं कि वे कृपा निधान है, वे सब पर कृपा करते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि उनके संसार

0: में कोई दुखी रहे। यदि हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो हमें उनकी कृपा के स्वभाव को जानना होगा। सज्जनता ये नहीं कहती कि किसी को पीड़ा में देखकर भी हम न पसीजें। ईश्वर की आराधना सज्जनता को छोड़कर नहीं जा सकती। महाराजा विक्रम को बहुत दिनों से दिमाग में चल रहे अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सज्जनता ईश्वर भक्ति की प्रथम और अनिवार्य शर्त है। किसी का नुकसान करके उसे पीड़ा पहुंचाकर या नीचा दिखाकर हम अपने अहंकार की पूर्ति तो कर सकते हैं, किंतु ये भी हमारी आंतरिक कमजोरी का ही प्रतीक है। कमजोर आदमी ही बदले की कार्यवाही पर भरोसा करता है। जब आप किसी को नीचा दिखाने में अपनी शक्ति झोंकते हैं तो ईश्वर सोचता है कि इस जीव को नीचे रहने में ही आनंद आता है, इसीलिए उसकी इस नीचता पर उसे ही नीचे गिराते हैं। वे व्यक्ति अपनी ही निगाहों में गिरते हैं और भगवान भी उसे पतित कर देते हैं। किसी ने पूछा, सामने वाले ने हमारा अहित किया, हमें पीड़ा पहुंचाई, फिर भी क्या हम उससे बदला न लें? संत ने कहा, सज्जनता की कसौटी यही है। अपने मन के अनुकूल होने पर तो सामने वाला हमें प्रिय लगता है, तब उसके प्रति सद्व्यवहार रखा तो ये सामान्य व्यवहार है, सभी ऐसा करते हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, सामने वाला अप्रिय नहीं हमारा शत्रु प्रतीत हो, तब हम उसके प्रति उदार व्यवहार रखें, ये सज्जनता है। प्रतिकूलता में सद्व्यवहार सज्जनता का लक्षण है। एक बात और विचार करें, जब हम सज्जनता प्रदर्शित करते हैं तो ईश्वर कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। सज्जनता हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। ईश्वर भक्ति का लक्षण यही है कि व्यक्ति सज्जन बन जाता है। सच्चा ईश्वर भक्त सज्जन ही होता है, तो सज्जन ईश्वर भक्ति के बिना रह ही नहीं सकता।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को। हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे। साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
2: बंसी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है उत्तरा केलकर, श्रीकांत पारगावकर और साथियों का।

सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्री राम का नामस्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ वाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोक कर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्रीराम का कार्य करके लौट कर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने चार योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा

16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बलबुद्धि की था पाली थी। आशीष देकर उसने कहा, श्री राम का काम तुम अवश्य पूरा करोगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था उत्तरा केलकर, श्रीकांत पारगावकर और साथियों का। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। श्रोता, आज इसमें कलाकार है कोहिनूर लंगा और साथी।

너

Thank you.

I'm sorry.

0: स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगे। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोमरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेन और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओ, आइए जानते हैं आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के बैतूल केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:20 पर सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। सुबह सवेरे जनउपयोगी जानकारी पर आधारित इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:50 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। विविध रंगी कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9 से 10 तक आकाशवाणी की विविध भारती मुंबई से। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम होगा सुबह 10 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 से हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। सखियों का मन पसंद कार्यक्रम महिला जगत होगा सुबह 10:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा खेलों में महिलाओं की भागीदारी यानी वर्ल्ड फुटबॉल डे। साथ ही सेहत की पोटली में जानिएगा महिलाओं के लिए संतुलित आहार के बारे में और कार्यक्रम में सुनिएगा सखियों के पसंद के फिल्मी गीत। दिन में 11 से शाम 5:30 तक आप सुनेंगे विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी हम सुनवाएंगे शाम 5:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा प्राथमिक उपचार की जानकारी रखें। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के साथ ही स्तंभ के अंतर्गत जानिएगा अजब गजब दुनिया के बारे में और कल के आकर्षण के साथ ही सुनिएगा चंद फिल्मी गीत। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर होगा शाम 6:05 पर। शाम 6:30 पर हम सुनवाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम सब्र सुनिएगा शाम 6:50 पर। सामयिक चर्चा के साथ ही शुरू होगा हमारे अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी शाम 7:20 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा खेत, जमीन, मकान से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें और सामयिक चर्चा होगी बकरी पालन के फायदे इस विषय पर। श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा बातें खेती किसानी की। साथ ही कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता, सुनेंगे लोक संगीत, जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र माधुरी सुनिएगा रात 8:00 पर। हम सुनवाएंगे

कार्यक्रम युगल गीत विविध रंगी कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से 10 बजे तक विविध भारती मुंबई से। आपकी पसंद श्रोताओं की पसंद के गीतों का एक कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन सुनिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में रात 10:30 बजे। राग होगा बागेश्री। श्रोता इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर, आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विश्व भर में अनिश्चितता

0: का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर वन स्थान पर है। अब तक लगभग 102,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78,00,000 मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100,00,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ यह फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नौतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।

खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित 5 अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आबा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, ये सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की मनमोहक आवाज में। श्रोता, इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन था आरडी बर्मन का। आइए अगला गीत हम सुनते हैं अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाजों में। संगीतकार है आरडी बर्मन और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। सुनिए इस खूबसूरत से गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शमा मालविया। लीजिए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत मुकेश की मधुर आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी है। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

0: लॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोता, ये कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म छाया का। तलत महमूद की आवाज में इस गीत को लिखा है सलील चौधरी ने और धुन बनाई है राजेंद्र कृष्णा ने।

फिल्म दो कलिया का ये खूबसूरत गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। इस गीत को लिखा था रवि।

0: आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए जनउपयोगी जानकारी पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: श्रोताओ, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए ये जनउपयोगी जानकारी। जिले के सभी स्कूलों के 500 मीटर क्षेत्र को बनाया जाए नो ड्रग जोन। जी हां श्रोताओ, बैतूल कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवने की अध्यक्षता में नार्कोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम तथा बेहतर समन्वय के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशा मुक्ति एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन ने निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों के 500 मीटर क्षेत्र को नो ड्रग जोन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में ड्रग स्मैक एवं आर्टिफिशियल नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने बताया कि गत वर्ष चोपना एवं रानीपुर क्षेत्र में अफीम की खेती के प्रकरण में मंदसौर एवं नीमच से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कृषि वन एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि नशीले पदार्थों की अवैध खेती से संबंधित जानकारी तत्काल पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जाए। आबकारी विभाग को भी पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर नार्कोटिक्स ड्रग के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया। श्रोताओ, कलेक्टर डॉक्टर संजय सोनवने ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि जिले के सभी स्कूलों में दिसंबर तक रोस्टर बनाकर नशा मुक्ति संबंधित जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने पुलिस और रेवेन्यू को स्कूलों के पास संचालित ऐसी गुमटियों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति पर केंद्रित खेल गतिविधियों के आयोजन के भी निर्देश दिए। साथ ही नशा मुक्ति से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के संपर्क नंबर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित कराने को भी कहा है। तो श्रोताओ, जन उपयोगी जानकारी अब समाप्त हुई। लीजिए सुनिए अब ये देशगान।

0: सुबह सवेरे।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति

0: सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजो स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार

0: बाद पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबर में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनिषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी

0: इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत सौ पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ता ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the U.S., Australia,

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत

0: यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
5: वीर जोरावर की जय। वीर जोरावर की जय।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।

0: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
1: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
0: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
1: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जयरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह राजा रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
6: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
6: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
6: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
6: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
6: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
6: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
7: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
1: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वही निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
0: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
2: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब न हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
8: हुजूर, आप

0: फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
1: लेकिन जरा होशियारी से।
0: जो हुकुम सरकार।

0: तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़ कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी।
2: हुजूर,
0: बांटो इस बच्चे को संजीव से।
1: छोड़ो मुझे, हाथ लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश शाबाश सारा जग, मैं खुश हुआ, मैं मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
1: अच्छा तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: छोड़ो मुझे।
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा ये नहीं हो सकता।
5: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
5: व्हाई?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
5: तो तुम नहीं मानोगे। देखो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
5: Actually, you are a fool.
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
4: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
4: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
4: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
6: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बैतुल है। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से।
8: सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

रजनी फिल्म से आप सुन रहे थे एआर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में, युवराज फिल्म से, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाजों में गुलजार के बोल।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं टशन फिल्म से, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में, कौसर मुनीर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना, जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतजार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतजार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतजार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, तुम्हारी सुलुफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। डीजे सुदक्षिणा को इजाजत, और सुनते रहिए देश की।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। डीजे सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
3: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपने एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माय नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो न हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

और फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जय। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सजान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नौतपे की तपिश होने से आमजन हलाकान है। भीषण गर्मी के चलते जिले में जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। वहीं किसान आगामी खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जिले में इस साल 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का और शेष रकबे में मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। धार जिले में भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन पूर्व जिले में 10 दिवसीय कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तैयार किए गए विशेष कृषि रथ को केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर तथा कलेक्टर राजीव रंजन मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए तैयार किए गए 13 कृषि रथ प्रतिदिन 4 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। 9 अप्रैल से प्रारंभ में खरीदी 28 मई तक चलेगी। जिले में साल 250 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से अब तक 229 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी 25,435 किसानों से की जा चुकी है। जिले में इस साल 44,913 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 30,510 किसानों को स्लॉट बुक हुए हैं। धार जिले में जनगणना 2027 का पहले चरण का कार्य चल रहा है। 31 मई तक चलने वाले पहले चरण में प्रगणकों ने समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जिले में 7,17,530 मकान होने के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। काम पूरा होने के बाद क्रॉस चेकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रहे। धार जिले में आमजनों की सुविधा और आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से धार के प्रधान डाकघर सहित विभिन्न डाकघरों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंकिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। धार स्थित ऐतिहासिक गौशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए फैसले के बाद से सभी और उत्साह का माहौल है। गौशाला के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार की ऐतिहासिक गौशाला पहुंचे। उन्होंने मां वाग्देवी की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धार में माता सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा। राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल गंगा समर्थन अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिले भर में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर जल स्रोतों के पूजन और गंगा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार जिला इस अभियान में प्रदेश में 6वें स्थान पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। धार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया गया। धार के प्रसिद्ध शिल्पकार संगीतज्ञ रघुनाथ राव कृष्णराव फड़के कला अवधान को समर्पित 3 दिवसीय 11वां पद्मश्री फड़के संगीत समारोह गतिमान जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। गायन वादन और नृत्य की संगीत श्रेणी का संगम माने जाने वाले फड़के संगीत समारोह में शास्त्रीय नृत्य, गायन और वादन की नई विधाओं से संगीत प्रेमी परिचित हुए। श्रीलंका मुक्ति दल की प्रमुख डॉक्टर अंजलि मिश्रा को इस साल पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अंतिम दिन कोलकाता की ख्याल गायिका श्रीमती पियानी चटर्जी ने गीत और भजन प्रस्तुत किए। धार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील सचान का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। हमारा अगला प्रसारण
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोता ये सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। आज हमें सबसे पहली व्हाट्सएप फरमाइश मिली है बोरसारा नैला छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता है प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनमोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। इनके साथ ही मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, लखविंदर संधु और विवान मिगलानी। आप सभी ने सुनना चाहा श्रोताओं वीर जारा का ये खूबसूरत सा गीत। आइए आपकी करते हैं फरमाइश पूरी और आप तक भेज रहे हैं आप सभी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से, और आज आपके साथ हूँ आपकी रेडियो दोस्त शमा मालविया। श्रोता, हमें अगले गीत की फरमाइश लिख भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, इनके साथ ही धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये खूबसूरत गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोता, अगले गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से, राजेंद्र नागर ने, अंजू नारंग ने, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। इनके साथ ही जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म धर्मात्मा का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओ आपकी पाती आपके गीत लिए हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त शमा मालविया आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। लीजिए सुनते हैं अगला गाना फिल्म भ्रष्टाचार से और इसकी फरमाइश हमें लिख भेजी है दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखेलाल वर्मा ने। इनके साथ ही जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान इरफान मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का फिल्म भ्रष्टाचार का ये खूबसूरत गीत।

0: अच्छा
1: तुम ये तो गाओ। तेरे नैना तुम ऐसा करो, ये गाओ।

श्रोता अगले गीत को सुनना चाहा है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने। इनके साथ ही मजनू काटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक।

मलिक और माही मलिक ने। इनके साथ ही जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौशीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। तो लीजिए सुनिए किशोर कुमार की मधुर आवाज में ये प्यारा सा गीत।

इस गीत को और सुनना चाहा है ग्राम रजौनी जिला महोबा मुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उभय भानपाल जय हिंदपाल दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश और दिव्यांश बघेल और इनके सभी परिवार ने।

0: संपन्न होता है।
1: पल भर के प्यार
0: हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सखियों का मन पसंद कार्यक्रम महिला जगत।

0: आज महिलाएं अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से नई पहचान बना रही हैं। पहले ऐसा माना जाता था सखियों कि क्रिकेट फुटबॉल ये जो खेल है ये केवल पुरुषों के लिए होते थे, लेकिन आज इस सोच को बदल रही है हमारी आज की महिलाएं यानी हमारी बहनें। आज लड़कियां भी फुटबॉल खेल रही है, देश दुनिया में अपना नाम बना रही है, जिसे देखकर सखियों आज गांव और शहरों की बेटियां भी फुटबॉल में रुचि ले रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों में खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिससे कि लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। महिलाओं में खेल में भाग लेने से जो केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता है बल्कि उनका मन भी मजबूत बनता है। खेल हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। खेल कड़ी मेहनत और टीम भावना जैसे कि एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात सीखियों कि अपने जीवन में खेल को अपनाकर लड़कियां आत्मविश्वास से भर जाती हैं और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखती हैं। आज कई भारतीय महिलाएं फुटबॉल खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रही है, जैसे कि बाला देवी, श्रेया हुड्डा, नंदिनी मट्टू, आशा लता देवी, मनीषा कल्याण, रतन बाला, ये सभी भारतीय महिलाएं फुटबॉल टीम से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर हमारी बेटियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार और कई संस्थाएं मिलकर महिलाओं को खेल से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं दे रही हैं, जिसका फायदा उन बच्चियों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इन संस्थाओं की मदद से खिलाड़ी महिलाएं अपने सपनों को पूरा करती हैं। सखियों, फुटबॉल केवल एक खेल ही नहीं है बल्कि यह आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक माना जाता है। जब एक लड़की मैदान में उतरती है तो यह संदेश देती है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। हमें अपने घर और समाज में लड़कियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि परिवार का साथ मिले तो बेटियां हर ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। बस आज जरूरत है कि हम लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ने का मौका दें। स्वस्थ शरीर और मजबूत आत्मविश्वास से ही एक सशक्त समाज बनाता है। तो आइए सखियों, इस विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि महिलाओं और बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि महिलाएं अपने सपनों को खुलकर जी सके और उन्हें पूरा कर सके। तो सखियों, शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में भी महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। तो ये तो थी हमारी आज की बात और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सखियों, इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और चलिए करते हैं आगाज श्रृंखला सखियों की पसंद का। इसके साथ तो सखियों, आज की पसंद हमें जो आई है ये आई है गोंदिया से और ये लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम को हम नियमित सुनते हैं और हमें यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। लिखने वाली हमारी सखिया है प्रभा गंगभोज, जितेंद्र, रुद्र और इनका परिवार। और सखियों, इन्होंने फरमाइश की है फिल्म पड़ोसन से। तो आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम सुन रही सभी सखी सहेलियों और श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी योगिता देशमुख का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हाजिर हूँ मैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत लेकर। सखियों, जैसा कि आप जानती हैं कि आज है दिन मंगलवार, जिसमें होती है हमारी श्रृंखला सखियों की पसंद यानी आपके साथ। तो सखियों, इस श्रृंखला का आगाज करेंगे कुछ ही देर में। उससे पहले हम बात करते हैं खेलों में महिलाओं की भागीदारी और विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर महिलाओं के बढ़ते कदमों की। सखियों, आज ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी बहनें न कर सके। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, विज्ञान हो, सेना का हिस्सा हो या खेल का मैदान।

0: लॉग ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और ऐसे क्यों, इसके बाद हम करते हैं अगली फरमाइश को शामिल, जो हमें आया है बैतुल से। सिखियो ये लिखती है कि हम आपके नियमित श्रोता हैं। महिला जगत कार्यक्रम मुझे सुनना बहुत पसंद है और यह कार्यक्रम महिलाओं के जीवन, उनकी समस्याओं, सफलता की कहानियां और समाज में उनके योगदान को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में हमें नई नई जानकारियां मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें दिए जाने वाले प्रेरणादायक विचार, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां, शिक्षा और परिवार से जुड़ी बातें बहुत ही उपयोगी होती हैं। गांव और शहर की महिलाओं की उपस्थितियों को सुनकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि यह मनोरंजन के साथ साथ सीख भी देता है। मधुर गीत और प्यारी प्रस्तुतियां सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। रेडियो के माध्यम से आप महिलाओं की आवाजों को हर घर तक पहुंचा रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरी और मैं पूरे टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। कृपया ऐसे ही अच्छे और प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें। और सिखियो इसी के साथ इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म जब वी मेट से। तो आइए सिखियो आप ही की पसंद पर सुनवाते हैं जब वी मेट से ये प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से गीत के बाद सखियो अब बात करते हैं सेहत की पोटली की, जिसमें आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए संतुलित आहार की। सखियो इन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण इस बढ़ते तापमान से हर कोई परेशान है। गर्मी से राहत पाने के लिए जरूरी है सही खान पान का होना, जो गर्मी से लड़ने में शरीर को ताकत देता है। महिलाओं के साथ साथ सभी छोटे बड़े घर के सदस्यों को संतुलित आहार लेना चाहिए। गर्मी से राहत पाने का सबसे आसान तरीका है, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। इसी के साथ नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और ताजे मौसमी फलों का जूस बनाकर पीना सेहत के लिए फायदेमंद है। सखियो इन पेय पदार्थों को पीने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और शरीर में पानी की कमी भी कम होती है। सखियो कल से यानी कि 25 तारीख से नवतपा शुरू हो चुका है, तो ऐसे में गर्मी का मौसम ज्यादा गर्म भरा होता है, इसीलिए सेहत का ध्यान जरूर रखें। अपने भोजन में हरी सब्जियां, दालें, दही, सलाद, इन सभी का भरपूर सेवन करें। सलाद में आप टमाटर, खीरा और प्याज अधिक मात्रा में लें। साथ ही अंकुरित अनाज लें। इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा

0: मिलती है जो कि सेहत को मजबूत बनाए रखता है और कमजोरी दूर करता है। गर्मियों में अच्छी सेहत पाने के लिए इन दिनों में आप कच्ची कैरी का आम पन्ना, सत्तू और सूखे चने की भाजी खाए। क्या है कि इन्हें खाने से लू लगने का खतरा भी कम होता है और सखियो गर्मी से राहत भी दिलाता है। सखियो लू से बचना है तो हमेशा घर से आप जब भी बाहर जाते हैं तो उस समय स्कार्फ और चश्मे से अपने आप को जरूर कवर करें और एक छोटा सा प्याज हमेशा अपने साथ रखें। पानी में ग्लूकोज, नींबू का और खीरे का छोटा टुकड़ा जरूर डालें और इस पानी को पिए। इसे पीने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और गर्मी से राहत मिलती है। तो सखियो इस गर्मी में अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें और सेहत की पोटली की इन बातों को जरूर अपनाएं। तो अगली फरमाइश को हम पूरा करें उससे पहले लेते हैं यहाँ एक छोटा सा अंतराल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और चलिए सखियो आज की अगली फरमाइश हमें आई है ग्राम आमला खापा खतेड़ा से। ये लिखते हैं कि आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हमारे साथ बात साझा करती है इसके लिए बहुत ही अच्छी लगती है। मैं बाहर शहर में पढ़ता हूँ और गांव का रहने वाला हूँ और जब भी छुट्टियां होती है तो मैं गांव जरूर आता हूँ। गांव का जो वातावरण है वो मुझे बहुत ही पसंद है। हमारे यहाँ इस समय गर्मी में रामलीला का आयोजन चल रहा है जिससे हम अपने विरासत, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और रामायण हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। और इसी के साथ ये सुनना चाहते हैं फिल्म विरासत से ये प्यारा सा गीत। और लिखने वाले, इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं विक्की, कपिल, ईशु, याशु, वेदू, लक्ष्य। तो चलिए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं विरासत का ये प्यारा सा गीत।

सखियो, कल के आकर्षण में हम आपको बता दें कि कल हमारी आपसे बात होगी त्याग, सेवा और परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका और बकरीद विशेष पर। हमारी बात होगी सखियों के साथ यानी आपके साथ, और साथ ही मनोरंजन होगा कुछ फिल्म संगीत के साथ। और सखियों, इस कार्यक्रम में आपके साथ होगी रश्मि मासूदकर। तो कल का कार्यक्रम सुनना ना भूले, महिला जगत कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे।

सखियो, आपकी पसंद को हमने आप तक पहुंचाया है और आपका शुक्रिया हम किस तरह अदा करें ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इस खुशी को हम आपके साथ बयां करना चाहते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

सखियो, आज का महिला जगत कार्यक्रम हमारा इस प्यारे से गीत के साथ यही संपन्न होता है और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सखी योगिता को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से।

दुर्गा माँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश। जॉगर्स पार्क फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी। जंजीर फिल्म से ये गीत सुनिए।
1: गर खुदा मुझसे

हम सफर हम राज हो ता कयामत जो चिरा।

माना हम पे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हद की कीमत क्या है ये बता दे तू।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाल क्या है जनाब। जी हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा। फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी में से लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और वेडनेसडे फिल्म से इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने से लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मित्र प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यही समाप्त होता है। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थी। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलिंग, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को

0: क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले भूपेंद्र की आवाजों में एतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों से छीलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह की आवाज में इंदिवर ने इसे लिखा था।

आपकी कसम इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहरी खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की

0: जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यह है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफी सारे शब्द, काफी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है, जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे, दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

मुझको जानी वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था। और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे का अभिवादन किया, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और इसके अलावा एक श्रोता ने लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहां प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेम युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं, तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर आप तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की तीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ, बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है, तो दिल में विरह की एक मीठी

में दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की तीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी

सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आजाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं बिल्कुल। और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

फिल्म है कभी कभी, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत।

0: नहीं हटती नजारे हम क्या
1: बिल्कुल सही कहा, नजारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियां पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं, और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत और ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना बहुत जरूरी है, गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफी लंबा मैसेजेस और काफी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली, इमोशनली, तो जरूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहां आप तक पहुंचाते हैं इस गीत

के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज्यादा जरूरी है, इसलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसी उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है। प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है। बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहा आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हों जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इस चीज को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नजर आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर। जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

केक हो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो जरूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्म पत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मजा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आंखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है।

इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मजा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आंखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है। त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में खयाम का संगीत था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा, ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं। साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ अक्सर। वहां चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं। वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता, और कवि ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है, और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहे। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है मुझे बताएं।

रात कल ये ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि और बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफर, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ, और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसे ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वही जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन आबाद चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

0: चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता। कई बार मन ही मन हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, मन पर काई नहीं जमने देती बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से सवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी।
1: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉ. नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा की 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत कल गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ही मां शिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा उनका साथ 35 साल पुराना और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेलिया ने उनका स्वागत किया। अब करते हैं मौसम का। इस बार मौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्तरीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं।

खंडवा के मानदाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मुतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: एज डेमोक्रेटिक नेशंस,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान द्वीप क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। कोर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। कोर तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांझू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाकुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए।

0: ये पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलप्पुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पुरमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
2: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता

0: क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांझू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: देश की सुरीली धड़कन, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज की सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से ये तभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चूहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं। और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं हाँ। वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं हाँ। कि नहीं भाई अभी तो
1: क्या बात करने वाली है, आज
2: क्या बोलने वाली है,
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के, राशन पानी है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने से सारे काम हो जाने चाहिए।
2: मंदाकिनी मैम, देखिये मंदाकिनी जी, क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती है ना, ये हर घर में होती है।
1: जी,
2: कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके हाँ,
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। अच्छा। अभी हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल,
1: हालांकि

0: उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर पर ही हैं।
1: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
0: आनंद भी आता है
1: और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना मंदाकिनी, तब
0: नागौड़
1: बचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो ये सुनने को
0: ही अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
1: कहने का मतलब खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
1: तो देखिए हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के लिए ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शर्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजे।
0: हाँ, लिखिए ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते हैं,
1: आप बता सकते हैं कि फलाना भी कान का कच्चा है।
0: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है हमारे अपने घर में ही। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची है उसका मतलब।
1: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी है और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
0: बिल्कुल, सुनते ही ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए थे, खत लेके सदम तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत सारे
0: खत आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाग्नि जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्मसुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते
0: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपने ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा,
0: बिल्कुल
1: आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है। यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखी और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरूआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरूआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरूआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो
1: बच्चे
0: हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन जाते हैं, हाँ। तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा,
0: हाँ।
1: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले दो घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं, और सुबह उठने के दो घंटे बाद ही मोबाइल देखिए। तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती, क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुत है रे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक
1: बिल्कुल
0: है ना वृंदावन जी? हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना? तो ये सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना?
1: और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो
1: ना?
0: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की गर्म बात कर रहे हैं।

0: तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉपक्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
1: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी के और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं।
0: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
1: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
0: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉपक्लूज की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉपक्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया।
1: जी, और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉपक्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
0: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड्स 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
0: तो मंजरी

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे की उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्चे वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते।
1: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चे होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। सबसे पहले तो इंसान को, मंदाकिनी जी, अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं
0: डिगा
1: नहीं सकते, जिसे कहते
0: हैं अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर ढूल गए उधर
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उसकी बात सुन ली उधर, उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका

0: जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरे साथी लिखते हैं कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लेकर भेजी,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वहीं एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए।
0: ऐसे लोग जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में उसको भी वो हटा देते
1: हैं, मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं।
0: वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है, ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है वो बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुना
1: अच्छा
0: करके।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था, शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे, खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे तो वो चीजें कम पड़ गई हैं तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था और
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है,
1: सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावटी दिखावटी
0: नहीं होता। मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ, इस तरह के भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की
1: वाले ही करते थे। बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो लक्ष्मी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की इज्जत करते थे, पापा वहां लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: बनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल के रखना पड़ता था कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, मजा आता था। लेकिन गाने बहुत अच्छे,
1: गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखती है कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है।

0: है यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है। जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासी का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, इससे कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बाराती हो तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग, बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी, उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीनशेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
1: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है। लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहां पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
0: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
1: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत
0: चुहलबाजी
1: टाइप की भी होती थी, थोड़ा यादगार दिन है वो।
0: बिल्कुल।
1: अभी तो जैसे कि अब व्यवस्था होटलों में हो जाती है।
0: हाँ,
1: तो
0: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई हैं।
1: बदल गई, होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
0: होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे। तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई है,
1: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल याद।
1: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर बाकी बात करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जन्मासी में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जन्मासी में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ। तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी। तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जन्मासा जिसे जन्मासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जन्मासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जन्मासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जन्मासा होता है, लेकिन उस समय के घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जन्मासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जन्मासे के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है। अब तो बराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जन्मासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते थे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जन्मासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जन्मासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जन्मासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जन्मासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, तो वो तो किसी और का बगीचा है। अब आम लगे हैं, अब बराती लगे तोड़ने में, अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जन्मासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं प्यारा सा गीत।
1: जी,

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में कभी कभी।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज वापस से ताजा हो गए ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग, गाना बजाना ही उसको, उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में वाद्य
1: वृंद बनाना, वो भी और भी चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा निजा निदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये माइनर
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे
0: अच्छा,
1: गामा पादा,
0: दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
0: जी,
1: तो और भी बदमाश
0: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में।
0: शर्मारे बता रहे थे।
1: हाँ, थोड़ा सा शर्मार हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी
1: बहुत चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
0: थोड़ा।
1: इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: पिताजी आए उन्होंने। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो आपने वाला किया होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी जी।
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने। अच्छा। इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी,
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे।
0: और जमाना भी सख्ती का था,
1: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
0: कहीं और पहुंच गए।
1: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
0: जी,
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
0: तो क्या हाल होगा।
1: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
0: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
0: जी,
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि

0: बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं कि शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूं।
1: जी, ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, ही सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं, उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा, उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज
1: नहीं करते।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे। वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। वो तो साक्षात, आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के।

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है चार बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना।
1: बिल्कुल,
0: और वो चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल।
0: सो उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली आई बॉर्न एंड ब्रॉट इन दिल्ली
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी,
1: खतरनाक जी,
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर साढ़े पांच बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम व्हाटएवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ
1: जी जी।
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, साढ़े सात आठ बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए।

0: 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनकी आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बाजरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है,
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है,
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज
0: अनुशासन से, रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूं कि ऐसे घराने का बच्चा हूं और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूं। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल,
0: ये और मैं एक ही है। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूं और एक सास की सेवा कर रहा हूं, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूं, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूं
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके

0: होल्ड कर पाते थे,
1: जी जी जी
0: इसको ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं।
1: जी जी जी।
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो

0: आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना, ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग।
1: जी
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूं,
1: जी बिल्कुल
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें एक तो पंचम दिखा रहा हूं
1: हाँ बिल्कुल
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का एक नोट
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल है
0: ठीक है?
1: आखिर में
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना, उसके लिए
1: आप माध्यम है
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है,
1: जी
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही
0: तो हमने तो बचपन से ही देखा है सर, अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूं, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं तो
0: इसका
1: आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता,
1: जी तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं
1: कृष्णा
0: लाया इसलिए
1: बांसुरी
0: हूं,
1: बजाइए
0: मैं
1: जी
0: लाया इसलिए हूं कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे, हाँ
1: चले।
0: मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा
1: क्या प्यारी बात है
0: ये कि मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी जी
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है,
1: जी
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
1: हाँ है
0: है ना,
1: जी
0: इसलिए आप कभी ये गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी जी जी
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब
1: जी
0: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका, अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं बेटे भी हैं शिष्य भी हैं, अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं समझ में नहीं आता है,
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है
0: देखना पड़ता है।
1: जी
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूं,
1: ठीक है और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते
0: मैं
1: हैं
0: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी
0: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन
1: साहब ने। वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी जी जी
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी, जैसे ये चल रहा है

0: जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: अच्छा, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कुछ सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: वो वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उस हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे,
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक। गजब,
1: वही आशीर्वाद है।
0: जी जी जी,
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ

0: आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या करते हैं, उनके
1: जब
0: सवाल
1: पीने
0: भी
1: जाई
0: जी।
1: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
0: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
1: जी
0: उस वक्त, म्यूजिक क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
1: जी
0: काम करने लग गया था, तो फिल्म से उतना था क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं आई मीन रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरे माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक
1: बिल्कुल
0: पारे, गुजिया, घर की में मिठाई। तो पहले बाहर से नहीं आता था मेरे घर,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
1: और वो ठेठ बनारसी।
0: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
1: गजब।
0: हाँ तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
1: जी
0: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता,
1: हाँ, चोरी चोरी फिल्म का
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने भी नहीं सुना वो गाना,
1: जी
0: तो तब
1: जी
0: का सुना हुआ है,
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: हुलिया आई रे कन्हाई।
0: हाँ अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था, तो फिर ऐ दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ
1: फिल्म का
0: रजिया
1: गाना।
0: सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल
0: हो तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम,
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था ना, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है।
0: एंड आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम।
1: तो
0: यस
1: आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था, ऑलराउंडर
1: अच्छा,
0: ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे।
0: फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ नहीं।
1: जी, लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेलते थे ना, वो मैं बता रहा हूं ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में,
1: खेल रहे हैं तो फिर
0: फिर
1: बस
0: खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
1: डरते डरते।
0: हाँ कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब, तो
1: हाँ हाँ
0: कोई
1: बिल्कुल
0: मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ,
1: हाँ,
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
1: बस
0: ही गए घर।
1: जुनून के तहत खेल
0: हाँ
1: रहे हैं।
0: वो तो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी, और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले
0: फॉर एग्जाम्पल, वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, तो दिन भर चला जाता था उस जुनून में, फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर
1: ये
0: वाले तो मेरे
1: ये
0: साथ,
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
0: हाँ
1: होगी।
0: वो महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे
1: अच्छा ये कोर्स से बाहर का सवाल है।

0: आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस, आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हैं, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं।
0: हाँ, स्टूडियो चलते ना,
1: स्टूडियो चलते,
0: मजा आता है।
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: वहां पे
1: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक, जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ। अभी जो मैंने तानपुर चलाया
1: जी जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहां जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरा एक हमारा चक्कर
1: लगता है।
0: तो वहां पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होकर और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीजें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहां पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है। अब वो क्या है वो आप डिसाइड

0: कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा, फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए, गलत ना हो जाए।
1: इतने सारे लोग,
0: इतने सारे लोगों के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति, सब बैठे हैं एक रूम में तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
0: वही था, वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में, सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम हैं।

जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत। आती है तो आ जाए मौत बेशक, कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 बजे है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यह वाणी।

नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी इस कड़कड़ाती गर्मी में स्वस्थ होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। तो श्रोताओं, मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो सखी सोनम गुदवारी, स्वागत करती हूँ आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें हमारी आज की बात का विषय है प्राथमिक उपचार की जानकारी रखें। इसमें प्राथमिक उपचार क्या है और कैसे होता है, इस विषय में जानकारी देंगे। इसके बाद होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जिसमें मिलेंगे आपको पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब और इस सप्ताह के नए 5 प्रश्न। तो सभी श्रोतागण जल्दी जल्दी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। इसके बाद होगा कार्यक्रम का अंतिम क्रम स्तंभ, अजब गजब दुनिया, जिसमें होती है दुनिया की रहस्यमयी बातों पर चर्चा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आपने सुना कुणाल और ऋचा शर्मा की आवाज में फिल्म सिंघम का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत के बाद कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं प्राथमिक उपचार के बारे में। तो दोस्तों, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचाने से पहले दी जाने वाली तत्काल सहायता को प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसका उद्देश्य रोगी की जान बचाना, दर्द कम करना तथा स्थिति को और गंभीर होने से रोकना होता है। प्राथमिक उपचार किसी भी व्यक्ति द्वारा थोड़ी जानकारी और सावधानी के साथ दिया जा सकता है। श्रोताओं, आज के समय में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। दुर्घटना, चोट, जलना, बेहोशी, सांप का काटना, हृदयाघात या किसी अन्य आपात स्थिति में सही समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार व्यक्ति की जान बचा सकता है। कई बार अस्पताल पहुंचने में समय लग जाता है, ऐसे में प्राथमिक उपचार रोगी को सुरक्षित रखने और उसकी स्थिति को रोकने का कार्य करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार की सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य है घायल व्यक्ति की जान बचाना, स्थिति को गंभीर होने से रोकना, रोगी को आराम पहुंचाना, जल्दी स्वस्थ होने में सहायता करना, अस्पताल पहुंचने तक आवश्यक देखभाल करना। जब प्राथमिक उपचार दें तब हमें शांत रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, स्थिति का सही आकलन करना चाहिए, रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एम्बुलेंस और डॉक्टर को बुलाएं, और यदि रक्तस्राव अधिक हो रहा हो तो उसे तुरंत रोकने का प्रयास करें। श्रोताओं, घर, सड़क या कार्यस्थल पर कटने छिलने की घटनाएं सामान्य है। यदि आपके साथ कटने या छिलने जैसी घटना हो तो घाव को साफ पानी से धोएं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, साफ पट्टी बांधें। यदि खून अधिक बह रहा हो तो घाव पर दबाव डालें। गहरी चोट होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, इसी तरह जलने पर भी प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। जले हुए भाग को तुरंत ठंडे पानी से धोएं, बर्फ से सिकाई करें, परंतु ध्यान रहे बर्फ सीधे त्वचा पर ना लगाएं। जले स्थान पर टूथपेस्ट, तेल या मिट्टी ना लगाएं। साफ कपड़े से ढक लें। गंभीर जलन होने पर हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों, सांप

काटने पर प्राथमिक उपचार की जानकारी आवश्यक है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। सबसे पहले तो रोगी को शांत रखें, ज्यादा हिलने डुलने ना दें, जहर चूसने या चीरा लगाने की कोशिश ना करें, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। इसी तरह दोस्तों, बिजली का झटका लग सकता है। घर में हड्डी फ्रैक्चर की घटनाएं भी आम हैं। हमें सभी घटनाओं के लिए प्राथमिक उपचार की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। और आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है हार्ट अटैक, जो कि बहुत आम हो गया है। बड़े बुजुर्गों से लेकर युवा और छोटी उम्र के बच्चों में भी यह देखने को मिल रहा है। आजकल हृदय रोग तेजी से बढ़ रहा है। यदि किसी व्यक्ति को सीने में तेज दर्द, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ हो, तो सभी को CPR की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए और CPR देना आना चाहिए। हर घर, स्कूल, कार्यालय, वाहन आदि में प्राथमिक उपचार पेटी होनी चाहिए, जिसमें पट्टियां, गौज, एंटीसेप्टिक दवाएं, कॉटन, कैंची, दर्द निवारक दवाएं, बैंड एड, थर्मामीटर, दस्ताने आदि रखे होने चाहिए। श्रोताओं, प्राथमिक उपचार केवल ज्ञान नहीं, मानवता का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति घायल होता है और हम उसकी सहायता करते हैं, तो यह समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को बढ़ाता है। कई बार समय पर दी गई छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। तो श्रोताओं, अब आप समझ ही गए होंगे कि प्राथमिक उपचार क्या है और इसकी जानकारी होना कितना महत्वपूर्ण है। तो अब लेकर चलते हैं आपको मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आपने सुना अनुषा मणि और विशाल ददलानी की आवाज में डॉन 2 का ये खूबसूरत सा गीत। गीत के बाद दोस्तों क्रम है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। तो पेन कॉपी तो आप सबके हाथों में होंगे ही, तो पहले इस सप्ताह के 5 नए प्रश्न जान लेते हैं। ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर वन राज्य कौन सा है? फिर से सुनिए, ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर वन राज्य कौन सा है? तीसरा प्रश्न है हमारा, एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? अंतिम और पांचवा प्रश्न है, 1965 का भारत पाक युद्ध मुख्यतः किस मुद्दे पर हुआ था? 1965 का भारत पाक युद्ध मुख्यतः किस मुद्दे पर हुआ था? तो ये थे इस सप्ताह के 5 नए प्रश्न। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह के प्रश्नों के सही जवाब। पहला प्रश्न था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यकृत यानी लीवर। दूसरा प्रश्न है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब है बारह सिंघा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किस महान खिलाड़ी को द वॉल के नाम से जाना जाता है? भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किस महान खिलाड़ी को द वॉल के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है राहुल द्रविड़। चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। और पांचवा प्रश्न है, भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के किस ऐतिहासिक सैन्य और वैज्ञानिक उपलब्धि की याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। तो श्रोताओं, ये थे पिछले सप्ताह के प्रश्नों के सही जवाब। और एक बार फिर से गौर कीजिए इस सप्ताह के प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न था, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर वन राज्य कौन सा है? तीसरा प्रश्न है, एशियाई

खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? पांचवा प्रश्न है, 1965 का भारत पाक युद्ध मुख्यतः किस मुद्दे पर हुआ था? तो दोस्तों, इन प्रश्नों के सही जवाब आप हमें व्हाट्सएप और पत्रों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल। हमारा पिन कोड है 460001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। आइए, अब वक्त हो चला है मनोरंजन की दुनिया में सैर करने का।

मानव शरीर का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी अंग है। यही अंग हमारे सोचने, समझने, याद रखने और भावनाओं को महसूस करने और शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो लगातार एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं। इतनी जटिल संरचना होने के कारण मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं भी कई प्रकार की होती है, जिनमें सिर दर्द सबसे सामान्य समस्या है। मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों को नसों के माध्यम से नियंत्रित करता है। जब हम कुछ देखते, सुनते या महसूस करते हैं, तब मस्तिष्क तुरंत संकेतों को समझकर प्रतिक्रिया देता है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे सेरिब्रम सोचने और याद रखने का कार्य करता है, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ब्रेन स्टेम सांस और दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में लगातार विद्युत और रासायनिक गतिविधियां चलती रहती है। यह गतिविधियां हमारी भावनाओं, व्यवहार और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दोस्तों, बात करें सिर दर्द की, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि दर्द सीधे मस्तिष्क में होता है, लेकिन वास्तव में मस्तिष्क स्वयं दर्द महसूस नहीं करता। दर्द सिर की नसों, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों में उत्पन्न होता है। जब इन हिस्सों में तनाव, सूजन या दबाव बढ़ता है, तब सिर दर्द महसूस होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव बहुत सामान्य हो गया है। तनाव बढ़ने पर शरीर में कार्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे सिर की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है और दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह माइग्रेन एक विशेष प्रकार का सिर दर्द है, जो कि आज एक आम समस्या बन गया है, जिसमें सिर के एक हिस्से में तेज धड़कन जैसा दर्द होता है या मस्तिष्क की नसों और रसायनों में असंतुलन के कारण होता है। जब व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता, तब मस्तिष्क थक जाता है। इससे दर्द नियंत्रित करने वाले रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है और सिर भारी लगने लगता है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है। इसके कार्य और रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बने हुए हैं। सिर दर्द मस्तिष्क और शरीर के बीच होने वाले असंतुलन का संकेत हो सकता है। यही दिनचर्या, तनाव नियंत्रण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त है एक और प्यारे से गीत का।

इसी के साथ दोस्तों आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा होगा। चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगी कि सीखने और आगे बढ़ने का यह सफर हमारे साथ हमेशा जारी रखे। तो दीजिए इजाजत मुझे यानी अपनी रेडियो हमसफर सोनम गुदवारे को। नमस्कार।

श्रोताओं, चलिए अब नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज और कल की प्रसारण सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं आज के शेष कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का प्रोग्राम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज सुने नानक राम पारस्कर और साथियों के गाए कुछ पारंपरिक लोक गीतों को। कार्यक्रम फिल्म संगीत शाम 6:30 और इसके ठीक बाद शाम 6:50 का समय रहेगा गैर फिल्मी गजलों भजनों और कव्वालियों के प्रोग्राम सबरस का। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी। इस कार्यक्रम में आज सुनिए चर्चा खेत जमीन मकान से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें। इसके अलावा सामूहिक कृषि चर्चा में आज का विषय रहेगा बकरी पालन के फायदे। इन सब के अलावा एक भेंट वार्ता, बातें खेती किसानी की, कुछ लोक संगीत, मौसम का हाल और बाजार भाव। चित्र माधुरी फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम सुनिए रात 8:00। कार्यक्रम युगल गीत रात 8:30। फिल्म संगीत का ही प्रोग्राम आपकी पसंद का समय रहेगा रात 10:00 और सभा के अंत में रात 10:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग रागेश्वरी में।

श्रोताओं, कल यानी बुधवार 27 मई को हमारी प्रसारण सभा आरंभ होगी सुबह 5:55 से। सुबह 6:05 पर सुनिए कार्यक्रम भक्ति धारा। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे अनूप जलोटा, बेला सुला के, लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर को। श्री रामचरित मानस गान सुबह 6:35 पर कलाकार होंगे उत्तरा केलकर, श्रीकांत पारगांवकर, शोभना राव और साथी। लोकगीतों का प्रोग्राम लोक रंजनी का समय रहेगा सुबह 6:45। इसमें कल के कलाकार होंगे लखन लाल यादव और साथी। क्लासिक फिल्मी गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से आप सुनेंगे कल सुबह 7:20 पर। कुछ जन उपयोगी सूचनाओं के साथ हम हाजिर होंगे सुबह सवेरे में सुबह 7:50 पर। और कल के इसी सभा में सुबह 8:30 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कल सुबह 10:00। 10:00

5 मिनट पर प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे कल सुबह 10:10 पर, और इसके ठीक बाद सुबह 10:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे बकरीद पर चर्चा, त्याग सेवा और परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला हमारी बात सखियों के साथ, कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे चर्चा जंक फूड से दूरी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी। इसके अलावा इस कार्यक्रम की श्रृंखला वसुंधरा में कल का विषय रहेगा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम कैसे करें। इन सब के अलावा श्रृंखला इनसे मिलिए कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। गोधुली भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:05 पर। गैर फिल्मी गजलों भजनों कव्वालियों और गीतों का प्रोग्राम सब रस का समय रहेगा शाम 6:50। श्रोताओं, कल शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कल सुनिए चर्चा अपने गांव को साफ रखें इस विषय पर। सामूहिक कृषि चर्चा में कल का विषय रहेगा मुर्गियों को गर्मी से बचाएं। इन सब के अलावा श्रृंखला बातें खेती किसानी की एक भेंट वार्ता, कुछ लोक संगीत, मौसम का हाल और बाजार भाव, सेहत की बात गीतों के साथ। ये प्रोग्राम सुनिए 8:00। कार्यक्रम साहित्य सरिता 8:30। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे बैतूल बाजार के युवा कवि प्रसेन मालवी का काव्य पाठ। संपादन और प्रस्तुति प्रवीण चौरे की है। श्रोताओं, फिल्म संगीत का प्रोग्राम मेरी पसंद का समय रहेगा 10:00 और सभा के अंत में। कल आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत 10:30। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल की प्रसारण सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

ये आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का प्रोग्राम माटी के स्वर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए नानक राम बारिस्कर और साथियों को।

लोक संगीतों के प्रोग्राम माटी के स्वर में आप सुन रहे हैं नानक राम पारस्कर और साथियों को आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

0: आप सुन रहे थे लोक संगीत का प्रोग्राम माटी के स्वर। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना नानक राम बारिस्कर और साथियों को। यह आकाशवाणी बैतूल है।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को। साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
2: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
0: यह आकाशवाणी बैतूल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत फिल्म दोस्ताना से। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अनुराधा पौडवाल की आवाजों में अभी आपने सुनी समीर की लिखी रचना फिल्म प्यार प्यार से, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं आर्यन ग्रुप का गाया ये गाना।

अभिजीत के गाए इस गैर फिल्मी रचना के साथ ही कार्यक्रम सबरस संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी बैतूल है। अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों का, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। तुषा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
2: जल संरक्षण को लेकर हमारे विचार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के, 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखरा, झरने, नदी के उद्यम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
1: ये परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। ये परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 23 वर्ष पहले मां शिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और एसपी निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4,000,000 रूपये दिए जाएंगे। सांसद बीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
1: बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और QR कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री पीयूषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज की है। कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से 2.5 घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया। जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जांच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में NGT के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जांच होगी। 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए MP लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि AI की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। मौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जांच की गई और धार में 1 जून को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे। 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। पीयूषा शर्मा मौत

में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी।

कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी सुन रहे सभी किसान भाइयों को, सभी किसान बहनों को और सभी श्रोताओं को सीमा मिश्रा का राम राम। आज हम आज की बात के अंतर्गत बात करेंगे खेत जमीन मकान से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें। कृषि चर्चा के अंतर्गत बात करेंगे बकरी पालन से लाभ पर। आपको सुनवाएंगे नए गाँव के कृषक प्रयागराव नावंगे से की गई बातचीत, साथ ही लोकगीत भी सुनवाएंगे और बताएंगे आज के मौसम का हाल और बाजार भाव। तो अब से लेकर ठीक 8 बजे तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी। श्रोताओं, खेत जमीन और मकान से संबंधित दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, खसरा, खतौनी और नक्शा आपकी संपत्ति के कानूनी प्रमाण होते हैं। इन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और भाई जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आपको भविष्य में धोखाधड़ी, संपत्ति और अवैध कब्जे से बचाते हैं। आपके पास मौजूदा मूल दस्तावेज इस बात का बड़ा सबूत होते हैं कि उस संपत्ति के असली और कानूनी मालिक आप ही हैं। कई बार जालसाज जो होते हैं वो मूल कागजों की नकल करके या फिर फर्जीवाड़ा करके आपकी जमीन बेचने की कोशिश करते हैं। हम कई बार सुनते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति ने दो लोगों को जमीन बेच दिया, तो वो यही फर्जीवाड़ा होता है। अब यदि असली दस्तावेज आपके पास हैं, तो आप आसानी से अपना हक साबित कर सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति को लेकर कोई कोर्ट केस या विवाद होता है तो अदालत में अपना पक्ष आप मजबूती से रख सकते हैं और जो ओरिजिनल कागजों की जरूरत पड़ती है वो भी आप जमा करते हैं। यदि आप अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं, खेत को बेचना चाहते हैं, तो बैंक और खरीदार हमेशा आपसे मूल दस्तावेज ही मांगेंगे। आपके पास सुरक्षित रहेंगे तभी तो आप दे सकते हैं ना। जमीनी दस्तावेज जमीन के स्वामित्व और पिछले स्वामी को सूचना देते हैं। खतौनी, खसरा ऐसे दस्तावेज हैं जो जमीन को उपजाऊ भूमि और आकार के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो अब आप समझ गए ना कि जरूरी दस्तावेज को आपको कितना संभाल के रखना है। और आगे हम बात करेंगे बकरी पालन पर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल। दिनेश नागले और साथियों की आवाज में लोकगीत।

0: किसान भैया, अभी आप सुन रहे थे दिनेश नागले और साथियों की आवाज में लोकगीत। आगे हम बात करेंगे बकरी पालन के फायदे पर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

किसानों, यह बात करते हैं बकरी पालन के फायदे पर। हम में से बहुत लोग खेती के साथ साथ कई पूरक व्यवसाय करते हैं ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, जैसे पशुपालन है, डेयरी व्यवसाय है, फूलों की खेती है, ऐसे बहुत सारे पूरक व्यवसाय हैं। अब इसमें भी बकरी पालन से कई लाभ हैं और आज बकरी पालन बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। पहले ये बात थी किसान भाइयों कि बकरी पालन ग्रामीण इलाके तक ही सीमित था, लेकिन अब ये शहरी इलाकों में भी फैल गया है और इसकी खास वजह ये है कि इसमें लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। पर भाई, लाभ कमाने के लिए छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो 10 बकरी एक बकरे से आप इसको शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप संख्या बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये विचार करना होगा किसान भाइयों कि आप दूध के लिए बकरी पालन कर रहे हैं या मांस के लिए बकरी पालन कर रहे हैं। ये जब आपका तय हो जाए फिर उसके अनुसार आपको बकरी की नस्ल का चयन करना होगा। यदि दूध के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो अल्पाइन, सोनेल, ऐसी जो बकरियां हैं उनको ले। मांस के लिए कर रहे हैं तो बीटल है, सोमाली है, नेपोलिटान है, ऐसी बकरियां आपको पालना होगा। 50 बकरियां दो बकरे को मिलाकर एक यूनिट बनता है। तो यदि आप एक यूनिट बकरी पालन के लिए फार्म हाउस खोलना चाहते हैं तो एक वर्ष में लगभग 8 लाख का खर्च आता है। यदि आप जंगल चराने भेज रहे हैं तो खर्च में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। वैसे बकरियों के आहार के लिए ज्यादा खर्च नहीं आता है और ना आपको ज्यादा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि बकरी ऐसी है कि जो छोटे मोटे पौधों की पत्तियां खाकर भी अपना गुजारा कर लेती है और उसको संपूर्ण आहार भी मिल जाता है। किसान भाइयों, बकरी पालन एक ऐसा लाभदायक व्यवसाय है जिससे कम निवेश में और कम जगह में आपको फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाभ कमाने के लिए बकरियों के पोषण पर, स्वास्थ्य पर, प्रजनन पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। आप जो भी बकरा रख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये तय कर लें कि वो बिल्कुल शुद्ध नस्ल का होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। ये पहले जांच करवा लें कि उस बकरे को किसी अनुवांशिक रोग ना हो, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो दूसरी बकरियों को होगी। इसके बाद बात आती है उनके आवास की। तो बकरी के आवास का जो लंबाई वाला भाग है वो पूर्व और पश्चिम दिशा में हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। लंबाई वाली दीवार को 1 से 1.5 मीटर ऊंची बना लें और उसके बाद दोनों तरफ जाली लगा लें। बाड़े का जो फर्श है वो कच्चा रखें, रेतीला रखें और समय समय पर बुझे हुए चूने का छिड़काव करते रहें। अब मौसम जैसे परिवर्तित होता है तो जैसे हम अपने लिए इंतजाम करते हैं वैसे ही बकरियों के लिए करना होगा, यानी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इनके आवास की उचित व्यवस्था रखें। 80 से 100 बकरियां यदि आपके पास हो जाती हैं तो 20x6 का बाड़ा पर्याप्त है। यानी बाड़ा ऐसा होना चाहिए कि जहां एकदम झुंड जैसा बकरियों को ना लगे और उनको चलने फिरने में परेशानी हो, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। खुला और जालीदार हो। बकरी के भार के अनुसार यदि आप उसको सूखा आहार देते हैं तो ये देना आपको बहुत जरूरी भी है, और यदि साबुत अनाज नहीं दे सकते हैं तो 60 से 65% लगभग दाना जो है

यदि आप उसको सूखा आहार देते हैं तो ये देना आपको बहुत जरूरी भी है। और यदि साबुत अनाज नहीं दे सकते हैं तो 60 से 65% लगभग दाना जो है वो चोकर में मिला करके आपको देना होगा, और इसमें फिर आपको खली और मिनरल भी मिलाकर देना होगा। ये तो हुई उनके आहार की बात, आवास की बात। अब हमारी बहुत सारी सावधानी के बावजूद, हमारी देखरेख के बावजूद हो सकता है कि कोई बकरी अस्वस्थ हो जाए, तो उस जो जो बकरी है अस्वस्थ हो गई है उसे बिल्कुल अलग कर दे। और बेहतर यह होगा कि आप समय पर टीकाकरण करवा लें, और अंत पे जो जीवनाशक जो है वो 2 बार साल भर में जरूर उनको पिला दें। इसका आपको ध्यान रखना होगा, टीकाकरण और जो जीवनाशक है वो आपको जरूर बकरी को देना होगा। इस प्रकार यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो बकरी पालन से लाभ ले सकते हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं हम एक और लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और अब आपको सुनवाते हैं नए गांव के कृषक श्री प्रयागराव नावंगे से की गई बातचीत। विषय है अनाज का भंडारण और खरीफ फसलों की तैयारी।
1: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है नए गांव के उन्नत कृषक श्री प्रयागराव जी नावंगे। चलिए इनसे जानते हैं इनके खेती किसानी के अनुभव और जो अभी हमारी रबी की फसल कट के तैयार हुई उसका भंडारण कैसे करें, साथ ही खरीफ फसलों में क्या क्या तैयारी करें। नावंगे जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही करूंगी कि इस समय तो आपकी जो गेहूं की कटाई है वो लगभग पूरी हो चुकी होगी
2: जी,
1: तो अभी क्या कर रहे हैं आप खेत में?
2: अभी हम गेहूं की कटाई होने के पश्चात हम गेहूं का भंडारण, पहले तो अपना अनाज को संभाल करके अपने घरों में सुरक्षित रखना, क्योंकि उसी से हमारी दिनचर्या और हमारा खाना गेहूं से ही होता है, इसलिए गेहूं को बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है हमको।
1: हाँ। तो नारंगी जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि बहुत सुरक्षित रखना पड़ता, तो क्या बाजार में बेचते भी हैं आपके यहाँ की उपज को?
2: जी हाँ।
1: अच्छा, तो
2: जी हाँ, हम गेहूं की फसल बेचते हैं।
1: हाँ,
2: और अभी हम ये
1: क्या क्या उपाय अपना रहे हैं सुरक्षा के भंडारण के लिए?
2: उसको पहला तो हम अच्छे तरह से सुखाते हैं, जिसमें नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पहले थ्रेसर करने के पश्चात हम खिलान में कम से कम 10 से 12 दिन खिलान में रखते हैं, ताकि वो पूर्णतः सूख जाए। सूखने के पश्चात उसमें नमी नहीं रहती, इसलिए उसमें घुन लगने का चांस कम होता है।
1: लेकिन नावंगे जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपकी बात से विरोध करूंगी कि हम कितना भी सुरक्षित गेहूं लेकर के आए, लेकिन जब हम घरों में लेकर के आते हैं
2: जी,
1: तो आप देखिए 3-4 सालों से ही ऐसा हो रहा है, उसमें घुन लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
2: घुन लगने का कारण है, एक तो घरों में नमी।
1: हाँ।
2: अगर आपकी घरों में दीवालों से नमी आती है या तो फिर टाट के बोरों में रखी जाती है, जब होता है, अगर गेहूं को, अगर सूखा हुआ गेहूं है, अगर उसको सुरक्षित रखा जाए और घर में नमी ना रहे, तो उसमें बिल्कुल भी घुन नहीं लगेगी, यो जैसे के वैसे सुरक्षित रहेगा।
1: तो नावंगी जी, मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से जो हमारा कार्यक्रम, हमारी जो बहनें हैं वो सुन रही हैं, हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे भंडारण करें वो सुन रहे हैं, तो आप बताइए कि कैसे भंडारण करें
2: इसको। सबसे पहले तो पूर्णतः अच्छे से सुखा लिया जाए, सुखाने के पश्चात उसको ऐसे सुरक्षित पैक करके रखा जाए, जैसे जूट की बोरी में न रख के उसमें प्लास्टिक की बोरियों में रखा जाए, और नहीं तो फिर कोठियों में रखा जाए। और मेरा तो मानना यह है कि सल्फास वल्फास न रखे जाए कोठी में। सल्फास रखने से उसमें तरह तरह की गैस होती है, तो खाने के साथ में अपने गेहूं में कहीं से न कहीं से वो अपने शरीर में केमिकल जाता है, तो उसमें भी तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो मेरा कहना है कि इसको एकदम से सूखा के रखा जाए, सूखी और सूखी जगह में ही रखा जाए, और जिनको वातावरण में जो ठंडा वातावरण होता है तो उससे बचाया जाए।
1: तो जैसा हमारे बुजुर्ग, हमारी जो दादी नानी थी वो ये करती थी कि जब गेहूं का भंडारण किया जाता था, और हमारे जो किसान भाई है वो भी थोड़ा ऊंचे पे करते थे।
2: पहले क्या होता था, कुछ घरों में आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, पहले क्या होता था, मिट्टी
1: के मंडूले बनाए जाते थे,
2: वो उसको बखारी बोलते थे।
1: हाँ, बखारी, हाँ।
2: बखारी बोलते थे, और उसके अंदर मिट्टी के अंदर ऊंचाई पे ले करके उसको पूर्णतः उसको बंद कर दिया जाता, पैक कर दिया। पैक करने के बाद उसमें हवा भी नहीं लगती थी, और हवा भी नहीं लगती थी उसके साथ मिट्टी के अंदर वो गेहूँ 6 महीने के बाद भी वो खोलते थे तो जैसे के वैसे सुरक्षित निकलता था। ये उसकी विशेषता है कि नमी
1: नाक रखते हैं कि भले हम अभी आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन यदि जो पुराने उपाय ऐसे हमारे कारगर हैं, यदि उनको अपनाते हैं तो हमारा भंडारण जो है वो सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ मिट्टी के मंडूले नहीं है, कोठियाँ नहीं है, उनको बोरियों में करना, आपने एक बात बताया कि बोरियाँ प्लास्टिक की लेना चाहिए,
2: प्लास्टिक,
1: तो उनको उपचारित करना क्या जरूरी है? पहले बोरियों में रखने से पहले बोरियों को उपचारित करना जरूरी है?
2: नहीं, नीम की पत्ती वगैरह रख सकते हैं,
1: नीम की पत्ती रख सकते हैं,
2: नीम की पत्ती रख सकते हैं। और मैं ये रासायनिक दवाइयों के
1: बिल्कुल खिलाफ में है,
2: खिलाफ में जी, बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई रासायनिक दवाइयों का उपयोग हो।
1: अच्छा, यदि जैसे भंडारण मान लो उचित ढंग से नहीं हो पाता है, तो क्या क्या नुकसान हमारे किसान भाई को उठाना पड़ता है?
2: नहीं, उसके बाद तो वो

0: बाजार कीमत
1: जैसे
0: अच्छी नहीं मिलेगी।
1: कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, वो गेहूं खाने लायक नहीं बचेगा। और वो यानी उस घर की आर्थिक व्यवस्था पूरी तहस नहस हो जाती है। गेहूं अगर गेहूं घर में है तो ही अपना त्योहार सही मना सकता है। और वो ही बाजार में ले जाके बेच करके और अपने जीवन यापन कर सकता है, अन्यथा
0: नहीं कर सकता। तो ये तो हुई कि हम जो भंडारण है उसका भी कैसे किन किन तरीकों को अपनाएं और सुरक्षित भंडारण करें। नारंगी जी, अब इसके बाद आप जैसे अब भाई देखिए नौतपा लग गया है ना।
1: हाँ।
0: और मानसून भी आ ही जाएगा।
1: हाँ।
0: तो हम कैसे अपने खेत को तैयार करके रखें कि आने वाली फसल के लिए हमें बिल्कुल तैयार खेत मिले।
1: जी सर्वप्रथम क्या होता है, पहले तो खेत बनाना पड़ता है। वो खेत देसी, हमारे घरों में तो ज्यादातर देसी हल से जुताई होती है। तो उसमें क्या होता है, पहले हम गेहूं काटने के बाद में बखर चलाते हैं दो बार, तो उससे वो जो गेहूं के डंठल है वो पूर्णतः ऐसे मुड़ जाते हैं और वो खेत में सुरक्षित पड़े रहते हैं। तो जिससे नमी बरोबर बनी रहती है। उसमें क्या होता है, वो डंठल जब तक गेहूं के है खेत में तो दरारें कम फटती है, उससे
0: नमी रहती।
1: अगर अधिक और वैसा ना किया जाए तो क्या दरारें अधिक फटती है, जैसा बरसात का पानी आता है वो सीधा वो दरारों के माध्यम से नीचे चला जाता है। और अपन जैसी फसल बोते हैं तो वो फसल एकदम से सूखने लगती है क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं गिरता, तो फटने नीचे उसका जो नमी
0: को चाहिए वो नीचे चली जाती है,
1: उसकी नमी रहती है वो एकदम से नीचे चली जाती है। नीचे चली जाती है तो ये एकदम नाजुक पौधा होता है, किसी सोयाबीन का मक्के का, तो वो एकदम से कुमला जाता है। अगर एक दिन दो दिन बरसात नहीं आए फिर बोलते कि हमारी फसल बिगड़ गई, फसल बिगड़ गई या अंकुरण क्षमता उसकी अच्छी नहीं है, या तो कंपनी वालों ने बीज खराब दे दिया।
0: हाँ हाँ।
1: यानी तरह तरह की ये, या तो फिर ये भी होता है कि नहीं तो दूसरी बार फसल बोना पड़ता है।
0: अच्छा, इससे अच्छा है कि हम वो मतलब जैसा आपने कहा कि देशी हल से जुताई करें, बखर चलाएं। तो जैसे ये हमारी जो परंपरा है, पुरातन परंपरा है, ये हल से जोतना, बखर चलाना, लेकिन अभी ये जो आधुनिक कृषि यंत्र आ गए हैं, ये यदि हम उत्पादन के दृष्टिकोण से, समय के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा समय और श्रम दोनों बचते हैं, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से और जमीन की क्षमता की दृष्टि से देखें तो ये बेहतर है, मानते हैं?
1: देखो, समय बचाना अधिक बड़ी जोत वालों के लिए समय बचाना भी आवश्यक है। पहले क्या होता था, श्रम यानी श्रमिक मिल जाते थे काम करने वाले, आज श्रमिक नहीं मिलते। आज श्रमिक किधर जा रहे हैं, कंपनी की ओर। आज खेती की ओर श्रमिक नहीं जा रहे, कंपनी उनको मालूम है कि कंपनी में जाएंगे अपन बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे ये करेंगे, तो वो उधर निकल जाते हैं। अब खेत के ऊपर, खेत में जाएंगे धूप लगेगी, अपने को लू लगेगी, तो खेती से श्रमिक हटते जा रहा है, कंपनियों की ओर भागते जा रहा है या शहरों की ओर पलायन कर रहा। गांव में अब मजदूरों की नहीं रहा, रहना बिल्कुल नहीं हो गया है, सीधा शहर में जाके रहो। तो इससे क्या हुआ कि खेतिहर मजदूर खत्म हो गया। तो अब इसमें क्या होता, आधुनिक ट्रैक्टरों पे ही किसान आ गया। तो किसान आ गया है तो आधुनिक ट्रैक्टरों में क्या होता है, आधी खेती जो ट्रैक्टर के पंजे होते हैं उसमें आधी खेती पलटती है और आधी खेती छूटती है। ये बोलो कि अगर तुम एक एकड़ खेती जोती है उसमें तो उसमें से 50% खेती बनेगी और 50% खेती छूट जाएगी, तो उससे पूर्णतः मट्टी नहीं पलटती है। इसके लिए दो तीन ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं, एक बार कल्टीवेटर किया, फिर रोटावेटर किया, रोटावेटर के बाद फिर बुआई, वो ऐसे तीन चार राउंड के खेत में जाता है तो लागत बढ़ जाती है, इसलिए किसान को उसमें कुछ बच नहीं पाता है।
0: तो इससे बेहतर है कि हम भले ट्रैक्टर चला लें लेकिन एक बार बखरानी जरूर हम खेत की करें, है ना। तो ये फायदा होगा। अब फिर आगे फिर कैसे तैयारी करेंगे, जैसे खेत तैयार कर लिए,
1: खेत तैयार के बाद में आता है बीज, बीज का चुनाव। तो अच्छी क्वालिटी का बीज, तो बीज अपने को अच्छी अंकुरण क्षमता वाला देखना पड़ता है, या तो फिर अपने घर में अच्छा साफ सुथरा करके रखना, उसको ग्रेडिंग करना, उसको बिल्कुल, और उसका जर्मिनेशन तो चेक करके ही बोना चाहिए, अन्यथा नहीं बोना चाहिए किसान ने। अगर 80% 90% 95% अगर जर्मिनेशन है तो ही किसान उससे बोनी करे, अन्यथा बिल्कुल न करे,
0: या फिर अच्छे जो प्रमाणित बीज हैं बाजार में मिलते हैं वो खरीद ले।
1: हाँ देखो, उसको भी ही उसका भी जर्मिनेशन देख के ही, अगर बाजार से खरीदा और मान लो कि वो किसी दुकानदार ने तुमको पुराना दे दिया, तो उसका भी जर्मिनेशन देख के ही वो बोए किसान।
0: ये बहुत जरूरी है,
1: जरूरी है
0: कि जब भी हम बीज लाए तो उसकी अंकुरण क्षमता पहले हम उसकी परख।
1: क्या होता है, 100 दाने अगर गिन लिया, टाट की बोरे में डाल दिया, उसको 2-3 दिन पानी दिया, तो उसमें अंकुरण क्षमता निकल जाती है, तो उसमें जर्मिनेशन समझ में आ जाता है कि ये कितने परसेंट जर्मिनेशन होगा इसका। अन्यथा बीज भी गया, समय भी गया
0: और
1: अपनी खेती भी गई, और एक साल बर्बाद हुआ। अब प्लस मानसिक संतुलन फिर किसान का वहाँ से बिगड़ जाता है कि खेती करना बेकार है, ये खेत में नहीं जाना चाहिए।
0: इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, है ना। अब जैसे नावंगी जी, हमने बीज की अंकुरण क्षमता देख ली, अच्छे बीज ले लिए, लेकिन देखिए प्रकृति पे हमारा आपका कोई बस नहीं है। मान लीजिए मानसून लेट होता है, तो उस समय जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का साधन है वो तो सिंचाई कर देंगे, लेकिन जैसे अभी अपन बात करते हैं कि छोटी जोत वाले परेशान, वो क्या कर सकते हैं?
1: नहीं, उसमें ऐसा है, बिल्कुल घबराए नहीं। क्या होता है, कभी कम दिनों की अवधि कम फसल, कम दिनों वाली फसल रहती है, उसको बो के भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 120 दिन वाली ही फसल लगा, 90 दिन वाली भी है, 70-75 दिन वाली है, तो अपनी जींस जो है तो उसको कम दिन वाली उपयोग, जैसे एक महीना बरसात लेट होती है तो अपन सीधे एक महीना कम वाली फसल बोएंगे।
0: यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा,
1: ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अपने को भैया शुरुआत बोनी होती है जैसे 15 जून से 25 जून तक होती है, तो अधिक चार में पूरे 120 दिन वाली फसल बो सकते हैं, और नहीं तो फिर 90 70 80 दिन वाली फसल बोई
0: दो सकते,
1: तो वो कवर करने के लिए रहता है।
0: और फिर जैसे मान लीजिए बारिश नहीं होती है, या ये भी हो सकता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या कोई रोग व्याधि हो सकती है क्या फिर?
1: नहीं नहीं, उसमें कोई वायरस वायरस नहीं आता है, क्योंकि वही फसलों का इन्हें सब अपने वैज्ञानिकों ने भी सभी इसने उनने पहले ही तय कर दिया जाता है कि धान अगर लगाई है तो वो बरसात में कोई दिक्कत नहीं आती है, बरसात के लिए बना है, इसीलिए बरसात के समय बोया जाता है। ज्वार बरसात की है तो यही बरसात में बोई, ज्वार की फसल अगर गर्मी में तो लगाएंगे नहीं कोई, तो ऐसा ये है कि सोयाबीन मक्का, तो इन फसलों का बरसात की फसलें हैं, इसीलिए इनको बरसात में बोने के लिए लगाया जाता है।
0: मतलब ये बात का भी हमारे किसान भाई ध्यान रखे कि यदि बारिश नहीं होती है या बहुत ज्यादा होती है तो भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान
1: नहीं, इसमें चिंता करने की कोई
0: आवश्यकता नहीं। इसके बाद समस्या आती है कि खाद और उर्वरक देने की, तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि भाई परंपरागत खेती करना चाहिए, तो परंपरागत खेती में आप जैविक उपयोग करते हैं कि फिर रासायनिक? जैसा आप कहे कि भाई मैं रासायनिक बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, जैविक खाद का उपयोग?
1: हाँ जैविक खाद का उपयोग करते हैं, हमारे पास केचुआ खाद भी है, तो हम केचुआ खाद मिलाकर देसी यंत्रों से बिल्कुल बो देते हैं, या तो फिर अगर मान लो कि हम कभी लेट हो जाते हैं, ट्रैक्टर लगाना ही पड़ा, तो फिर क्या होता है कि हम जैविक खाद केचुआ खाद जो है हमारे पास उसको पहले छिड़काव कर देते हैं, और उसके बाद में डायरेक्ट बोनी कर देते हैं ट्रैक्टर से, तो उसमें हमको रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहले हम केचुआ खाद डाल देते हैं।
0: तो केचुआ खाद क्या आप घर में तैयार करते हैं?
1: जी हाँ, हमारे पास लगभग 50 गौवंश हैं, और हमने हमारे वहाँ पे केचुआ छोड़ दिए हैं, और वो बिल्कुल बढ़िया खाते हैं, चाय पत्ती जैसे चाय बना देते हैं, चाय पत्ती के जैसे खाद बना देते हैं, तो वो बहुत खाद अच्छा होता है, और जिसकी उर्वरक शक्ति भी अच्छी होती है, और जिसको केचुए ने खा लिया एक बार तो उसके बाद में उसमें कोई फफूंद नहीं रहती, कोई फंगस नहीं रहती है, उससे कोई कीड़ा उत्पन्न नहीं होता है,
0: कोई यहाँ भी बचत होती है,
1: यहाँ भी बचत होती है, तो उसमें जब कीड़ा उत्पन्न नहीं होता तो अपने को बीमारी नहीं लगेगी। फफूंद अगर नहीं है तो अपने को पदगलन वाला रोग नहीं रहेगा अपने खेत में, तो इन समस्याओं से काफी।
0: तो लगभग कितने दिनों में केचुआ खाद तैयार हो जाती है? जैसे मान लीजिए अभी आपको खरीफ की फसलों में उपयोग करना है, तो कब से आपने तैयारी कर दी है केचुआ खाद?
1: देखो केचुआ ऐसा है कि तुरंत डालो खाद डालो और तुरंत उस पे पानी डाल दो, और केचुआ अगर तुम्हारे पास वहाँ तुरंत मौजूद है तो वो ज्यादा तुमको 24 घंटे के अंदर वो तुमने गोबर डाला है उसको 24 घंटे में खा जाएगा अगर केचुआ बिल्कुल एक्टिव है। तो केचुए को होना अंधेला और दूसरी बात केचुए को होना नमी, यानी छाय होना, नमी होना, और वो क्या है छुपा रुस्तम है, जितना अंधेला रहेगा उतना ज्यादा

0: जाएगा। हाँ। उसको डर है कि अगर मैं बाहर निकलूंगा हाँ, तो मेरे को कोई बगुला खा जाएगा
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: या तो कोई चीटी खा जाएगी
1: हाँ, हाँ।
0: या कुछ भी खा जाएगा और वो उसके भार के 10 गुना खाता है गोबर को
1: और उतना ही खाद हमको मिल जाता है ना। बहुत अच्छी बात आपकी एक लगी थी नारंगी जी कि आपने कहा कि भाई मेरे पास पशु भी है ना, तो लेकिन आजकल आप देखिए कि यदि खेती है तो पशु नहीं है, पशु है तो खेती नहीं है, तो खेती और पशु ये एक दूसरे के कितने पूरक हैं?
0: नहीं, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के बिना, अगर खेत है
1: हाँ।
0: तो आपको पशु रखना ही पड़ेगा और
1: हाँ।
0: पशु नहीं है
1: हाँ।
0: तो वो तुम्हारा खेत जो है वो निर्जीव है
1: हाँ।
0: यानी उसमें कोई जीवन नहीं है
1: हाँ।
0: उसमें जीवन नहीं है
1: हाँ।
0: ये मैं दावे से कह सकता हूँ
1: हाँ।
0: क्योंकि जो खेतों में उर्वरक शक्ति मिलती है
1: हाँ। हाँ।
0: जो गोबर खाद से मिलती है और पशु के जो गौमूत्र है
1: हाँ। हाँ।
0: गौमूत्र में ही तो नाइट्रोजन रखी हुई है
1: हाँ।
0: तो हमारे खेतों में क्या होता है
1: हाँ।
0: जैसे गेहूं कटा
1: हाँ।
0: उसके बाद में हमारे खेतों में उनको छोड़ दिया जाता है वो बढ़िया गौमूत्र भी कर देते हैं और गोबर भी कर देते हैं और तो जैसे ही बरसात आती है
1: हाँ।
0: तो वहां से सब जीव एक्टिव हो जाते हैं हमारे खेत।
1: मतलब बहुत जरूरी है कि खेती यदि है तो आपके पास पशुधन भी होना जरूरी है। दावंगी जी, हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पे है, मैं चाहूंगी कि चलते चलते सलाह के रूप में आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, खासकर उन किसान भाइयों से जो खेती से पलायन कर रहे हैं।
0: हाँ, उनसे एक सलाह जरूर देंगे कि अपनी खेती के साथ में पशुपालन भी करें और पशुपालन अच्छा करें और अधिक से अधिक पशु रखें और ज्यादा से ज्यादा जैविक
1: हाँ,
0: करें
1: हाँ,
0: और ज्यादा से ज्यादा अपने कीटनाशक
1: हाँ,
0: और रासायनिक खाद
1: इनसे
0: थोड़ी सी दूरी बना के रखें
1: हाँ,
0: क्योंकि मैंने ये देखा है
1: हाँ,
0: कि ज्यादा रासायनिक खेती करने वाले के खेत और रासायनिक खेती करने वालों का जो खेती के प्रति लगाव
1: हाँ,
0: वो 5 साल तक होता है, 5 साल के बाद वो खुद ब खुद खेती से हट जाता है
1: हाँ,
0: तो मेरा यही सलाह है कि
1: जैविक खेती
0: से
1: और लंबे समय तक
0: करते रहो।
1: धन्यवाद नारंगी जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपने अनुभव हमारे साथ बांटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे ग्राम नए गाँव के कृषक प्रयागराव नावंगे से की गई बातचीत और अब कुछ बातें खेती किसानी की। इसके अंतर्गत बात करते हैं कि हरी खाद से हम अपनी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको कैसे सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि यदि हरी खाद की फसलों की बुवाई करते हैं यदि हम, तो हमारी जो खेत की मिट्टी है वो सुधर सकती है। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती खास करके भूमि में पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए, जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के लिए की जाती है और इस तरह की फसल को फूल आने से पहले कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है और ये हरी खाद के उपयोग से जो मिट्टी है उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनकी क्रियाशीलता दोनों ही बढ़ जाती है। हरी खाद के लिए दलहनी फसलें जैसे सनई, ढेचा, लोबिया, मूंग, उड़द, ज्वार, इन फसलों का उपयोग हमको करना होगा। इसके बाद जैसे क्योंकि इनकी जो उपज है, इनकी जो वृद्धि है वो बिल्कुल कम समय में हो जाती है और फसलों में जो पत्तियां हैं वो बड़ी होती हैं, वजनदार होती हैं और बहुत सारी संख्या में होती हैं। इन फसलों की यदि हम सिंचाई की बात करें तो इसमें जल और उर्वरक दोनों की आवश्यकता भी बहुत ही कम होती है, इससे हमारी लागत कम लगती है और कार्बनिक पदार्थ भी हमारी जमीन को मिल जाता है। किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन को वातावरण से मृदा में स्थिर करने वाले जीवाणु राइजोबियम में पाए जाते हैं। सनई, ढेचा, ये फसल की बुआई के लिए बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मूंग और उड़द की जो बुआई है उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था यदि है तो मई के अंतिम सप्ताह में, यानी अब अभी 3-4 दिन है हमारे पास, हरी खाद की फसलों की बुआई आप कर सकते हैं या फिर मानसून आने पर खेत में हरी खाद की फसलों की बुआई आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि 30 से 35 दिन फूल आने से पहले खेत में पार्टर लगाकर या कल्टीवेटर लगाकर हरी खाद की फसल को खेत में मिला दें और यहाँ खेत में मिलाते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हरी खाद की फसल 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर ही पलटें। समय से पहले पलटने से पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे और देर से पलटने में रेशा अधिक होने से

0: फसल को सड़ने और गलने में अधिक समय लगता है। यदि बारिश अधिक होती है या तापक्रम की दशा परिवर्तित होती है तो भी सड़ने और गलने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाती है। धान की खेती करने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें सनई ढेचा की फसल को लगाकर खेत को पलटकर और मचाई कर धान की रोपाई हम आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरी खाद की दलहनी फसलों से 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और गैर दलहनी फसलें जो हैं उसमें से 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बुआई के यदि हम डालते हैं तो हमको लाभ बहुत अधिक मिलता है। और अब एक नजर आज के बाजार भाव पर। कार्यालय कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन न्यूनतम 5,900 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 7,449 रूपये। चना 4,250 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 5,801 रूपये। मक्का 1,701 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 2,050 रूपये। गेहूं 2,201 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 2,575 रूपये। सरसों का न्यूनतम भाव रहा 5,001 और अधिकतम भाव रहा 7,901 रूपये। मूंग का न्यूनतम भाव रहा 7,301 रूपये और अधिकतम भी रहा 7,301। मसूर का न्यूनतम भाव रहा 6,200 रूपये और अधिकतम भी रहा 6,200 रूपये। तुअर का न्यूनतम भाव रहा 5,976 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 7,201 रूपये प्रति क्विंटल। और इसी के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। राम राम, जय जवान जय किसान।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी।

अमित खन्ना का लिखा गाना, बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। फिल्म है चलते चलते।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए फिल्म एक ही भूल के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम चित्र माधुरी संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्र माधुरी। यह आकाशवाणी बैतूल है। रात के 8:30 बजे है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युगल गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपने सुनी फिल्म आंखों आंखों में से ये गाना। बोल वर्मा मलिक के थे और संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये गाना आशा भोसले।

अगला गीत सुनाने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। कल रात 8:30 बजे कार्यक्रम साहित्य सरिता में आप सुनेंगे बैतूल बाजार के युवा कवि प्रसेन मालवी का काव्य पाठ। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति प्रवीण चौरी की है।

0: और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान

ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

0: एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहले की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों से। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: में ट्रैफिक की आवाज में सुनिए यकीन फिर उनका ये गाना।
1: जब तुम भूला न दोगे सपने

गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आज के फनकार इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रही थी आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाते हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरत बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपने एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माय नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया।

तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

करण जौहर फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

0: करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।
1: ओ शेरा

FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पसंद।

103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।